0: מילה, סנת הסטיגו ומתנה, ג'אטי אפם.
1: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.